चाहे थे लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। अब आप 5 मिनट से भी कम समय देकर वैसा शरीर हासिल कर सकते हैं जैसा आपने हमेशा चाहा था।

0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सेहतमंद लोगों में 10 में से 7 यूरोपियंस शामिल हैं और इटालियंस खास तौर पर मशहूर हैं अपनी परफेक्ट बॉडीज के लिए। ये बॉडी आप भी पा सकते हैं। याद रखिए, फिटनेस पंप के साथ आप परफेक्ट 6-in-1 वर्कआउट हासिल कर सकते हैं जो आपको उतना ही फायदा पहुंचाता है जितना कि जिम में रखी 6 महंगी मशीनें। तो दोस्तों, फिर जिम जाने की क्या जरूरत है?
1: Aujourd'hui encore, on nous tient en quarantaine. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas accès au métier des gens de haute caste. C'est ça la condition des pauvres dans ce pays. Quand je dis pauvres, c'est surtout les Dalits qui forment la majorité des pauvres dans ce pays. Si je veux prendre de l'eau au village, les gens de caste, ils jettent mes pots et mes ustensiles. Et s'ils commencent à m'injurier, moi je dois me taire et rester silencieuse.
2: On a toujours pris l'eau à part, car les gens de haute caste nous interdisaient d'aller à leur puits. Après, les autorités ont installé une pompe au milieu du village, mais ça ne change rien. Quand j'étais petit, je suis allé un peu à l'école. Comme c'était dans un petit village, l'école se trouvait dans le temple. Alors, comme nous sommes intouchables, on n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Mais le maître, lui, il était dedans. Nous écoutions ce qu'il disait aux écoliers à l'intérieur et comme ça, on essayait d'apprendre.

0: अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जो हम यहां से गुजरे तो तुम्हारा यह जुआ खाना नहीं है, मुख्तार सिंह का वही तबेला देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे।
1: Et on enchaîne avec une reprise.